0: सिटी रेडियो बेंसिगर 107.8 प्रस्तुत करते हैं
1: दिल की आवाज,
0: दिलों से दिल तक। तेरे दिल की आवाज का सीधा प्रसारण अब से हर रविवार सुबह 10:30 से लेकर 11:30 तक होगा और आपके साथ होगी आपकी शायरी जर्मियास। देर किस बात की, अपना फोन उठाइए और हमें डायल कीजिए। डायल करने के लिए हमारा नंबर
1: 0474-293-1111।
0: नंबर एक बार फिर से 0474-293-1111।

0: नमस्कार, दिल की आवाज सुनने वाले सभी श्रोताओं को शाइनी का सलाम, नमस्कार और आदाब। और जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं, ये हमारा सीधा प्रसारण है, तो जल्दी जल्दी अपना फोन उठाए, हमें डायल कीजिए। डायल करने के लिए हमारा नंबर है 0474293111। और आप सुन रहे हैं दिल की आवाज, दिलों से दिल तक, जहां बातें सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचती बल्कि सीधे दिलों में उतर जाती है। कभी प्यार की बातें होंगी, कभी दोस्ती की, कभी रिश्तों की मिठास होगी, कभी जिंदगी की सच्चाई, कभी हंसी होगी, कभी यादें होगी, और कभी कभी आपकी आवाज में छुपी हुई ऐसी कहानी होगी जो किसी और के दिल को सीधे जाकर छू ले। तो तैयार हो जाइए अपने दिल की आवाज की बात करने के लिए, क्योंकि आज फिर हम मिलकर बनाएंगे इस पल को थोड़ा सा और खूबसूरत। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये है दिल की आवाज, दिलों से दिल तक। शायद पहला कॉलर आ गया है। हेलो, दिल की आवाज में स्वागत।
1: हेलो, नमस्ते जी।
0: हेलो, नमस्ते, कैसे हो?
1: बिल्कुल ठीक है।
0: अच्छा जी, हाँ, सिंगल ली, डबल ली,
1: हबीबी।
0: हेलो हेलो,
1: सिद्धिन कामर कोलम से।
0: हाँ हबीबी।
1: ओके ओके ओके, मालूम है। ओके,
0: और सुनाओ,
1: आप कैसे हो?
0: हम ठीक हैं, आप बताओ।
1: ओके ओके,
0: कौन सा गाना चाहिए?
1: कौन सा गाना? शुरू फिल्म के अभी जा अभी जा।
0: गाओगे?
1: टाइम नहीं है।
0: अच्छा जी, ओके, कोई बात नहीं, तो
1: थोड़ा काम है। ओके, टाइम में थोड़ा जल्दी जल्दी काम करता हूँ टाइम में। ओके,
0: अच्छा जी,
1: मालूम है गाना पूरा में मालूम है।
0: अच्छा ठीक है, अगली बार गाना। ओके, आज टाइम नहीं है, कभी और गा लेना। ओके जी,
1: काम है ना, गाए तो अच्छा नहीं है। ओके, अच्छा गाए तुम। ओके
0: ओके जी, तो आपके लिए प्यार से गाना हम जरूर लगा।
1: मेरा दुकान भर आई है। ओके
0: ओके, पक्का आएंगे, पक्का आएंगे।
1: ओके ओके
0: ओके जी, तो आपके लिए एक प्यारा सा गाना हम जरूर लगा देंगे। और दिल की आवाज में बुलाने के लिए शुक्रिया।

0: दिल की आवाज में आपका फिर से स्वागत और एक प्यारा सा कॉलर आ गया है। हेलो, दिल की आवाज में स्वागत।
1: नमस्कार।
0: नमस्ते जी, कैसे हो?
1: ठीक है, आप कैसे हैं?
0: हम ठीक, आप बताओ।
1: मेरे को याद है ना फिल्म का ये गाना।
0: कौन सा गाना चाहिए?
1: वो कोई भी चलेगा।
0: अच्छा जी, ओके ओके ओके।
1: मेरा छोटा भाई का बेटा केडी।
0: नाम क्या है?
1: राहुल।
0: राहुल, ओके। तो राहुल के लिए ये प्यारा सा गाना हम जरूर डेडिकेट कर देंगे। हाँ जी, और दिल की आवाज में बुलाने के लिए शुक्रिया।

0: दिल की आवाज में आपका फिर से स्वागत। और जैसे कि हमने कहा, ये हमारा सीधा प्रसारण है, तो जल्दी जल्दी कॉल कीजिएगा। हाँ जी दोस्तों, जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हमेशा बड़ी बड़ी चीजों में नहीं मिलती। हाँ, कभी माँ की आवाज में, कभी दोस्तों की हंसी में, चाय की एक प्याले में, या किसी अपनों की कैसे हो पूछने में भी दुनिया की क्या बोलते हैं ना, छोटी छोटी खुशी छुपी रहती है। इसीलिए छोटी छोटी खुशियों से ज़रूर महसूस कीजिएगा, क्योंकि असली जिंदगी इन्हीं पलों में मिलती है। शायद कॉलर आ गया है। हेलो, दिल की आवाज़ में स्वागत।
1: हेलो, गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग आर्या, कैसी हो?
1: ठीक हो?
0: और बेबी कैसी है?
1: अच्छा।
0: हाँ, और सुनाओ, कौन सा गाना चाहिए?
1: तुमका नहीं देखा है लव स्टोरी मूवी का गाना।
0: गाओगे?
1: नहीं नहीं।
0: क्यों?
1: बेबी आता जी,
0: बेबी को सुलाने के लिए गाना नहीं गाती?
1: नहीं नहीं।
0: अच्छा, तो कैसे सुलाती हो?
1: तुमसे मोहब्बत तो है दीवानगी की हद तक, यह गाना चाहिए।
0: अच्छा, ओके ओके ओके
1: ओके जी।
0: ओके जी, तो बेबी को बहुत सारा प्यार देना, और आपके लिए प्यार सा गाना हम जरूर लगा देंगे। और दिल की आवाज में बुलाने के लिए

0: तो फिर
1: दिल की आवाज में आपका फिर से स्वागत। शायद कॉलर आ गया है। हेलो, दिल की आवाज में स्वागत।
2: नमस्ते शाइनी मैडम।
1: नमस्ते जी, कैसे हो?
2: कृष्ण मुंडे बात कर रहे हैं।
1: कैसे हो?
2: हाँ ठीक है।
1: हाँ और सुनाओ।
2: हमका गाना का हिंदी गाना चाहिए। हम यशवंत का जाने हमका हिंदी गाना, मराठा गाना है, इसका हिंदी में कर रहे हैं।
1: कौन सा गाना?
2: वो मेले प्रेम लो, ऐसा स्टार्टिंग ऐसा है मराठा में, मेले पूमड़ा ताले तेनल, ये गाना है।
1: ओके जी, तो आप गाओगे मलयालम?
2: वो हिंदी में कमाल नहीं, मलयालम में।
1: मलयालम में एक लाइन गाओ।
2: बेले पुमला ताड़े तेनला कचेवा पालपुं कन्यके पलंग कोरकम नीलाविन मंजरे।
1: हिंदी में कौन सा गाना है?
2: नीवा नीवा।
1: कोशिश जरूर करेंगे हम। हाँ कोशिश करेंगे, आई जस्ट ट्राई आई सेड, नहीं तो यशुदास का एक प्यारा सा गाना हम जरूर लगा देंगे। हाँ जी, यशुदास जी का एक प्यारा सा गाना हम जरूर लगा देंगे। और दिल की आवाज में बुलाने के लिए शुक्रिया।

0: പ്രൈസ് ഹുണ്ടായിൽ നിന്നും ജൂലൈ 20-നകം ഒരു പുതുപുത്തൻ ഹുണ്ടായി കാർ സ്വന്തമാക്കൂ. ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പ് മെഗാ ലക്കി ഡ്രോയിലൂടെ വമ്പൻ സമ്മാനങ്ങൾ നേടൂ. ചുങ്കത്ത് പ്രൈസ് ഹുണ്ടായി, കൊല്ലം, കരുനാഗപ്പള്ളി, നിലമേൽ. ഫോൺ 8714-62-4012.
1: दिल की आवाज में आपका फिर से स्वागत. और एक प्यारा सा कॉलर आ गया है. हेलो, दिल की आवाज में स्वागत. हेलो जी, हेलो
2: हेलो,
1: नमस्ते जी. ये कौन बोल रहा है?
2: कैसा है?
1: हम ठीक हैं, आप बताओ.
2: हम सही है यार, मौसम भी सही है, हम भी सही
1: है. अच्छा जी.
2: कौन? आप भी सही है.
1: अरे एकदम ठीक,
2: आप भी मजबूत होगा.
1: एकदम ठीक, एकदम ठीक.
2: और ये शादी है ना, अभी संडे का दिन पूरा शादी
1: जी,
2: इसके
1: जी,
2: लिए दो हफ्ता हो गया आपको बुलाया नहीं है.
1: अच्छा जी, ओके.
2: वो टाइम शादी का टाइम संडे का दिन आपका, पहले आप दो दिन प्रोग्राम किया था ना
1: जी जी,
2: वो दिन मुश्किल नहीं है, लेकिन अभी एक ही दिन है ना
1: जी जी,
2: इसके लिए वही दिन मिलेगा तो मिलेगा. फिर कभी कभी आप एस्केप भी होते हैं
1: जी.
2: अब ये गाने
1: और सुना, कौन सा?

0: कर दे दब दे। हेलो
1: ओके जी, तो आपके ओके जी, तो आपके लिए प्यार सगारा हम जरूर लगा देंगे और दिल की आवाज में बुला निकले। शुक्रिया, बुलाते रहिएगा।

0: दिल की आवाज में आपका फिर से स्वागत, और शायद कॉलर आ गया है। हेलो, दिल की आवाज में स्वागत।
1: हेलो, मैं शशि बोल रहा हूँ जी, कोल्लम
0: जी। नमस्ते, कैसे हो?
1: हाँ, मैं अच्छा है, आप कैसा है?
0: हम ठीक, आप बताओ।
1: अच्छा,
0: कौन सा गाना चाहिए
1: जी? हम किसी से हम नहीं, अमरा वचन धर्मेंद्र जी का।
0: अच्छा जी, आप गाएंगे?
1: थोड़ा थोड़ा आता है
0: तो शुरू करो।
1: यही गाना है, महबूबा महबूबा।
0: अच्छा जी,
1: मेरे को गाना बहुत पसंद है।
0: ओके जी, तो आपके लिए प्यारा सा गाना हम जरूर लगा देंगे। हाँ जी, और दिल की आवाज में बुलाने के लिए शुक्रिया, बुलाते रहिएगा।

0: ഫുട്ബോൾ സീസൺ ഹ്യുണ്ടായ് കാറുകളുടെ സർവീസിനൊപ്പം നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നു മികവുറ്റ ആനുകൂല്യങ്ങൾ. അതെ, ചുങ്കട്സ് പ്രൈസ് ഹ്യുണ്ടായ് സർവീസ് സെന്ററിൽ സർവീസിനൊപ്പം കരസ്ഥമാക്കൂ സ്ക്രാച്ച് ആൻഡ് വിൻ കൂപ്പൺ. ദിവസവും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന മൂന്ന് ഭാഗ്യശാലികൾക്ക് അടുത്ത പെയ്ഡ് സർവീസിൽ 40% വരെ ലേബർ ഡിസ്കൗണ്ട് നേടാം. ചുങ്കട്സ് പ്രൈസ് ഹ്യുണ്ടായ് സർവീസ് സെന്റർ, കൊല്ലം കരുനാഗപ്പള്ളി, നിലമേൽ. ഈ ഓഫർ ജൂലൈ 20 വരെ മാത്രം. കോൾ 8714624010.
1: दिल की आवाज़ में आपका फिर से स्वागत. दोस्तों, ज़िंदगी में सबसे बड़ा डर पता है क्या होता है? कि हम असफल होंगे तो क्या होगा, दैट मीन्स इफ़ आई फेल कि लोग क्या कहेंगे. हाँ, लेकिन हमेशा याद रखिए, लोग आपकी ज़िंदगी जीने नहीं आएंगे. इसीलिए अपने सपनों का फैसला लोगों की राय से नहीं, अपने दिल की आवाज़ से कीजिए. क्योंकि लोग क्या कहेंगे ये अगर हम सोचने लगे तो सच में लोग क्या सोचेंगे. शायद कॉलर आ गया है. हेलो, दिल की आवाज़ में स्वागत.
2: हेलो.
1: हेलो, दिल की आवाज़ में स्वागत. नमस्ते जी, ये कौन बोल रहा है?
2: मैं मोहतरा से राजेंद्र मुर्गा बोल रहा हूँ. कम से कम तीन महीना हुआ है मैं फोन नहीं किया.
1: जी नमस्ते. नमस्ते, कैसे हो?
2: अच्छा, क्या मैं गाना बोला है?
1: कौन सा गाना चाहिए?
2: दुनिया हस्ती मेला मेले में अकेला एक दोस्त ढूंढता हूँ मैं दोस्त की के लिए.
1: ओके जी, तो आप दोस्त नहीं ढूंढो, हमारी रेडियो का पूरा टीम आपका दोस्त है. तो आपके लिए प्यार से गाना हम जरूर लगा देंगे और दिल की आवाज में मिलाने के लिए शुक्रिया.

0: दिल की आवाज में आपका फिर से स्वागत, और शायद कॉलर आ गया है। हेलो, दिल की आवाज में स्वागत।
1: नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी।
1: बोल रहा
0: जी। नमस्ते नमस्ते, कैसे हो
1: आप? कैसा है?
0: हम ठीक है, आप बताओ?
1: ठीक है मैं भी।
0: हाँ, और सुनाओ, कौन सा गाना चाहिए?
1: सच्चे झूठा है फिल्म का नाम।
0: ओके, कौन सा गाना?
1: उसमें किशोर कुमार का गाना है। वो
0: गाओगे?
1: एक फिल्म का है गाना।
0: अरे बिंदास, शुरू करो।
1: गाना है ये, दिल को देखो चेहरा ना देखो, किशोर कुमार गाया ये गाना।
0: जी जी, दिल को चेहरे, दिल को देखो चेहरा ना देखो, चेहरे ने लाखों को लूटा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। जी जी जी, तो ये प्यारा सा गाना हम आपके लिए जरूर लगा देंगे। हाँ जी, और दिल की आवाज में बुलाने के लिए शुक्रिया, बुलाते रहिएगा।
1: थैंक यू।

तो दोस्तों, आज का इस खूबसूरत मुलाकात का समय अब धीरे धीरे खत्म होने को है। लेकिन याद रहे, रेडियो का कार्यक्रम खत्म हो सकता है, मगर दिलों का रिश्ता कभी खत्म नहीं होता। जिंदगी में हमेशा सब कुछ हमारे मन के मुताबिक नहीं होता। कुछ लोग हमारे साथ रहेंगे, कुछ लोग हमसे दूर चले जाएंगे, कुछ के सपने पूरे होंगे, कुछ सपने हमें और मजबूत बनाकर जाएंगे। लेकिन इस सभी के बीच में अपने दिल की आवाज और अच्छाई को कभी मत खोना। मुस्कुराते रहिए, प्यार बांटते रहिए, और जब भी जिंदगी में थोड़ी मुश्किल लगे, खुद को हमेशा जरूर कहिएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। और इस प्यार से विचार के साथ आपकी शायरी जर्मियास लेती है आपसे विदा। अगले हफ्ते मिलने तक नमस्कार।